0: इमाउ हाहोनांग आमपानिम पांगलो त्रिचुक्तानिमांग बेंगो झारक डुमची पुमचुमनालो आइखादादा छेम बिताहा यांगनिमांग
1: ए आपा खाना लोटरी भेमा लिसाउ युंगांगाउ कि
2: मादं दिखि तसिन गांगाउ हुसे लोटरी छुकोना नुवांगा मांगकी
1: लु मान भेमांग देदि लोटरी छुको कि पापा ओखालक मेसेज व्हाट्सएप फेसबुक भाइबर खाडांगा तानुजे मोडुम ओखावडुममा अनुनिन फोनगा तानुजे आम्नो झारक डुमची खांगमेदमा अनुनिन ओने खोनकी खाक्को संग छेनबिकापु मिची हुप आधारि आम्नो पासपोर्ट पिन ओखालक डुमची देम खाचे डोटमा अलिनिन मुन मात्र मांगदि पापा ओखालक डुमना बैंक आधारि डोटमा अलिनिन टुकमा लिसा पापा
2: अन्ना टुकटुम
3: थारु चुङतिने लेमा सामालामांग रातिन्चिने
4: सिद्धार्थ बैंकको झारक हाङ समिसिदा थारु चुङमा सावनम
5: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई